परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर और मेरे खिटाई के पापों से शुद्ध कर, पाप को मुझ पर प्रभुता करने न दे, ताकि मैं निर्दोष बना रहूं, जिससे कि मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करता रहूं और तेरे नाम की स्तुति के भजन सदा गाता रहूं।

प्रभु, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर।

हे परमेश्वर मेरे ईश्वर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर और मेरे ठिठाई के पापों से शुद्ध कर। पाप को मुझ पर प्रभुता करने न दे, ताकि मैं निर्दोष बना रहूं, जिससे कि मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करता रहूं और तेरे नाम की स्तुति के भजन सा

परमेश्वर मेरे ईश्वर मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर और मेरे खिटाई के पापों से शुद्ध कर पाप को मुझ पर प्रभुता करने न दे ताकि मैं निर्दोष बना रहूं जिससे कि मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करता रहूं और तेरे नाम की स्तुति के भजन सदा गाता रहूं।

ओ प्रभु, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर।

हे परमेश्वर मेरे ईश्वर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर और मेरे ठिठाई के पापों से शुद्ध कर। पाप को मुझ पर प्रभुता करने न दे ताकि मैं निर्दोष बना रहूं, जिससे कि मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करता रहूं और तेरे नाम की स्तुति के

परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर और मेरे खिलाए के पापों से शुद्ध कर, पाप को मुझ पर प्रभुता करने न दे, ताकि मैं निर्दोष बना रहूं, जिससे कि मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करता रहूं और तेरे नाम की स्तुति के भजन सदा।

प्रभु, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर।

परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर और मेरे ठिठाई के पापों से शुद्ध कर, पाप को मुझ पर प्रभुता करने न दे, ताकि मैं निर्दोष बना रहूं, जिससे कि मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करता रहूं और तेरे नाम की स्तुति के भजन सदा